0: खेम कल्याण के बाद शराफत हुसैन खां का गाया राग काफी कान्हरा प्रस्तुत है। रचना धीमा तीन ताल में है और बोल हैं सुख कर आई।
1: After Raag Khem Kalyan, we present the Raag Kafi Kanhada, rendered by Ustad Sharafat Hussain Khan. The composition is set to Dhima Teen Taal.